0: की जैमल सुर संगीति सदन बख्श
1: श्री शादी को
0: ये जगह का नाम सिंधी पत्र श्री शादी को ये जो दमुरा वाला हमारा